आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
2: सत श्री अकाल शुभ बोए बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: करे।
1: ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਸਰਪੰਚ।
2: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
1: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.
5: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसरड़, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
7: Create terror.
1: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
9: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
10: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
9: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
11: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
12: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
11: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
12: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच।
11: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
12: आहो जी आहो,
11: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
5: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
4: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
6: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
7: Create terror.
4: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
8: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
8: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
10: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
11: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
10: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
11: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
10: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
11: आहो जी आहो,
10: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਪੰਚ।
12: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
4: ਸਰਪੰਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: सतिकाल, मैं हां जी शेर गिल से तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
4: ਜੀਰੋ
5: 460-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।

रेडियो हां जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 17 जुलाई 2026 शुक्रवार दा दिन, भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके होए हैं हाजर। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दे नाल शुरुआत करते हैं। अमरीकी फौज ने दस्या है कि उसने लगातार 6वीं रात ईरान दे उत्ते हमले किते ने। हॉर्मुज स्ट्रेट दे उत्ते कंट्रोल नूं लेके दोहां देशां दे दरमियान संघर्ष बनिया होया। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सैटकॉम ने कहा है कि इन्हां हमलों का मकसद ईरान की फौजी काबिलियत नूं होर घट

0: 여한지 쏘나소 쥐하타레야
1: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create together.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: थैंक यू।
1: कैंट बोली होगी थैंक यू। सत श्रीकाल अंबर, की हाल है? सत श्रीकाल
2: रंजोत अंकल जी एंड कृष्णा अंकल जी।
1: सत श्रीकाल,
3: किवें हो?
2: बहुत
0: वधिया, बहुत वधिया। आवाज थोड़ी बड़ी दूर आंदी पई है। वधिया तुसी बड़ा,
1: तुसी दसो।
2: हां
3: तुहाडा दसो। बेटर है जी, बेटर, वधिया वधिया। और थोड़ी आवाज आ गई जी, हुन होर वधिया हो गया दिन है। कल थोड़ी सगो मिस हो गई सी कॉल साडे तो।
2: हां जी,
3: रियली सॉरी, रियली।
1: फिर तुसी चुटकला किथे साम के रख्या? कल वाला
2: मैं
1: आज बोली सुनोनी। अच्छा, बोली
3: सुनोनी। बोली है,
1: बोली तुही किथे रखी? बैग च रख ली।
2: पुतला
1: पुतला चुटकला। ओके
3: अच्छा, चुटकला।
1: ओके ओके,
3: वो जो भी सांभ के रखे।
1: चलो चलो,
2: बोली
3: बोली बोली चुटकले वाली बोली सुना दो। आशीष
2: पुतला मंडे,
3: चुटकला मंडे,
1: चुटकला मंडे। ओके
3: ठीक है, ये भी ठीक है। कोई ना रोस्टर कीता पे, वेरी गुड।
1: इनु वापस रख लो तुही जोड़ के ना। हां जी
2: हां जी
1: जी। बोली
3: बोली बोली बोली।
2: मेहंदी मेहंदी मेहंदी किते विच नचदी, मेहंदी किते विच नचदी, मेरे तमक का।

0: थैंक यू सी स्कोर,
1: बाय बाय, सी यू ऑन मंडे। ते मैं आज क्लाउड डो बना रही।
0: ओ क्लाउड डो, तो पर टी शर्ट ना गल कर ले। ओके ओके, बाय बाय बाय बाय।
1: मैं कर रही
0: हूँ। ओके ओके, कर लो कर लो कर लो कर लो।
2: बाय बाय बाय बाय बाय। बिपता ही पाई
0: चाहिए। कहते पैर लगन दें नहीं कुड़ी ये के तो।
2: सही
0: कहा। सच कहा तो नहीं तुझे ऑनर हो।
1: सच कहा लंका जी ते सेंटा बीजी।
0: सासरी काल
2: जी किमें हो?
0: हाल तो डा।
1: मेरा ठीक है, तादा की हाल है?
0: साड़ा भी ठीक है। लेट तो नहीं हो गया जब?
1: नहीं।
0: अच्छा, वेरी गुड। आऊं दी गल।
2: आप नहीं गल।
0: हो गए तो हो गए, अपन गल करके जाओगे।
2: गुड
0: है ना, वेरी गुड। नीत की सुनाओगे फिर आज?
1: मैं एक बोली।
0: ओके वाह,
2: वेरी गुड।
0: आई ते बोलियो बोलियो क्या काम?
1: आलू ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो तोल के, गोभी ले लो तोल के, बीजी ने कोट खादी आशे नगे बोल
0: के, बीजी ने कोट
1: खादी आशे नगे बोल के,
2: बले
1: बले बले बले
2: बिशुम,
1: बले
2: बिशुम, बिशुम, बिशुम,
1: बिशुम, बिशुम, बिशुम,
2: बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम,
0: बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, बिशुम, चपेड़ मेरे सामने ना तिखी बड़ी है चपेड़।
2: चलो जो है सो है।
1: तुसी पिंडी दा छेती छेती व्याह करो, ओ नीता मैं एक हो मुंडा लब देना।
2: बल्ले ने हुन तां रुको हो गया। ना ना रोके दा पॉइंट ये हुंदा कि रुको, ओने कुछ नहीं होना,
0: ओने नहीं कुछ होना। एदा करो तुसी पिंडी नू पीजीडीसीए कराओ ना चल।
2: ओए कित्थों लब के ले आंदी डिग्री।
1: गर्मिया आ लगी ते पिंडी लंदन जान लगी ते असी करेला ना व्याह करा लोगे फिर।
0: आ भी ठीक है वैसे,
2: आइडिया माड़ा नहीं।
0: आ भी ठीक है वैसे,
2: पिंडी दा करेले ना व्याह।
0: हाँ हाँ, ये ठीक है। दोवें दोवें दे जेड़े चीरे मार के विच मसाला भरी दा
2: अमरूद होरां नूं दस दिंदे आ जे छेती हुंदा हुंदा, नहीं तां फिर है ना अगले बैक आउट हो जाणे। इहो ज्यादा होर की
0: आहो, सोच सोच लो
1: तुसीं। सोच लो जे तुसी पिंडी दा छेती छेती व्याह कराना फिर अमरूद ना कराना, जे नहीं करना छेती फिर करेला रेडी है।
0: करेला रेडी है, आ भी वधिया। नहीं आ गुड है वैसे,
1: करेला हस रिया,
0: करेला हसदा,
2: करेला हस रिया, उन्होंने चांस दिस रिया ना अपना व्याह दा। क्या चलो
0: ये ते विचार किता जा सकदा,
1: बिकॉज जदों भी कुड़ी लभदा कुड़ी मुक जांदे।
2: बड़े बुरे ला,
0: कौड़ा बड़ा है ना।
2: कौड़ा है, इनको थोड़ा मिठा हो,
0: नहीं इनू साड़ के ही मिठा करना पड़ना। कोई नहीं कर दे इनू। थैंक यू थैंक यू
2: थैंक यू
0: थैंक यू।
1: आश्रम में गल कर लो।
0: हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल आश्रम। सत श्री अकाल
2: अंकल जी, हो हो हो, किवें हो?
0: जस्ट बोली की सुनाओगे फिर?
1: एक बुजालत।
0: ओके
1: ਤੇ ਧੁੱਪ ਰੁਕਦੀ ਆ
0: ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ।
2: ਅੰਨਾ
1: खराब
0: हो जाने जिन्ना खिच दे जे ऑफिस होना ब्लाइंड्स
1: वीर
0: जी आप बोली सुनाई के तानू कुटिया भी इन्होंने
1: ब्लूबेरी शायद नहीं
0: मिठा खंड
1: ओदे विच पाया बादाम
2: अखरोट
1: मैं दूध पाया मैं स्ट्रॉबेरी पाया ते मैं पाया
0: जिन्ना चिर तू ला ना इन चिर आटा गुन के लच्छा पराठा बन जाना
2: रोटी बन जानी
0: इन चिर अपना अर्नब तुम जे हुण हले नहीं गए तो हुण तुम कर सकते हो कॉल पुत सॉरी टाइम अज लग्या ज्यादा तो मैं तारी थोड़ी जी वेट कर दवा तो ओनली फॉर अर्नब कल भी बारी नहीं सी इहदी आई तो संदीप दत्ता जी कहिंदे कि सत श्रीकाल वाहिगुरु मेहर बनाई रखे सारयां दे उत्ते बहुत मेहरबानी जी रुपिंदर जी कहिंदे ने कि अरदास करते हैं सरबत के भले की सब चढ़ती कला के रहन ते बहुत मेहरबानी सुखदीप सिंह घुम्मन जी कहते हैं कि हर शब्द का मतलब तो वह समझदा जरूर है पर दुनिया के शोर तो वह कोहां दूर है उसकी कविता उसकी चुप का ही प्रतीक है जेकर अंदरों उदास है पर बाहरों बड़ा ही सदीक है कमल कलम चले तो पानी भी अग बन जाता है एक चुप इंसान जदों आप शायर बन जाता वाह बहुत वधिया जी ते लकी जी कहते हैं अभी मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि श्रीमान जी बर्तन साफ करने के लिए बुला रहे श्रीमती जी बर्तन साफ करने के लिए बुला रहे हैं और लौट कर आते ही अगली पोस्ट में आप सभी को बताऊंगा के बीवी को काबू कैसे करते
2: हैं ड्राई आंदे जे ड्राई आंदे जे
0: लाल जी तुसी आने रहो
3: अलम जी सत्यगत मेरे जी क्या है जी
0: सत्यगत जी दसो फिर किदा काबू करी दा वोटी नु
2: भले सिद्ध ही है ट्यूशन क्लास सत्यगत किमे हो ठंड तो नहीं लगती काम कर किदा ना ना ना भाई ट्यूशन दो सिद्ध है
3: काबू करना होंगे ना पैसे कमाई नहीं निकलते
0: फिर की करना है तुम ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ?
3: ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ
0: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ?
3: ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
0: ਆਹੋ,
2: ਅੱਛਾ,
3: ਅੱਜ
0: ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹ,
2: ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਸੂਰਜ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
0: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ।
3: ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਛੇੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ।
0: ਜਬਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ
3: ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਜਸਵਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ।
2: ਵਾਹ,
3: ਸੁਪਰਮੈਨ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਡਦੇ ਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਜਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਲਾ ਤਾ।
2: ਏਦਾਂ ਨੀ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ
3: ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ।
0: ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ?
3: ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ।
0: ਅੱਛਾ, ਹਮਦਰਦ ਕਾ ਸੰਕਾਰਾ। ਅੱਛਾ,
3: ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ
2: ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ
3: ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕਾ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2: ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ।
3: ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਹਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹਨਾ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ 6 ਵਜੇ ਆਜੂਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
2: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ।
0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।
4: ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ?
5: ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ PR ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, AAT ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, PR, US visitor visa ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
4: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
5: ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।
6: ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦਸਤਾਰ।
7: ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ।
6: ਸਟਾਰਿੰਗ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਗੀਤ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ।
8: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
9: Create terror.
5: जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह हेल्प करनगे अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वैरबी टोयोटा दे नाल
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Very B Toyota, the smart choice. सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਸਰਪੰਚ।
11: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
6: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: आज प्यार की होड़ी
3: दिल बोले तो
4: हार्ट हार्ट
5: हाँ यार सौदा सौदा
4: ओहो
2: दोनों डील

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
2: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
3: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
4: Create terror.
1: देखो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। You are listening. Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji. Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Haji. Stay tuned.

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: संत का दुखी विग्रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिला सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा,
1: संत के दुख ना तृष्णा कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए,
0: पया कितन मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर तिसके ओहो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: सब की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्या वो सास गिरा,
1: सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल अब करने हार, दूसर कौन कहे विचार,
1: जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से,
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-13 श्लोक,
1: तजो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए, सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी,
0: मन की टेक विधि सब जान, देवन को एक है भगवान,
1: जिस कह दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागे आए,
0: मारे राखे एक आप, मन कै कुछ नाही हा,
1: तिसका हुक्म बूढ़ सो खोए, तिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर पर सोए, नानक बिघ्न न लागे कोई,
1: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो,
1: नैनो पिव ठाकुर कारंग, साध संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद,
1: हर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा,
0: वडभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर की गुण गाहे,
1: राम नाम जो कर है विचार, से धनवंत गनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछाने, एतुत की हो सूझी जाने,
0: नाम संग जिसका मन माने, नानक तिन निरंजन जाने,
1: गुर प्रसाद अपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सा संग हर हर जस कह तू, सर्व रोग त्यो हर जन नह तू,
1: अंदर कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा,
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है ना लागह दुख,
0: जिसको हर पर मंचित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे,
1: जिस पर अपना कृपा कर, सो सेव कहो किसते डरे,
0: जैसा सत तैसा दिष्टाया, अपने कार्य में आप समाया,
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सा बूझिया,
0: जब देखो ता सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल,
1: नह किछ जन्म नह किछ मरे, आपन चलित आप ही करे,
0: आवन जावन दिष्ट अनदिष्ट, आज्ञाकारी तारी सब शिष्ट,
1: आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत राज थापो थाप,
0: अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड,
1: अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तनमंत,
1: प्रभु के सेवक सगलो धारण, प्रभु के सेवक दुख विसारण,
0: आपे मेल लय कृपाल, गुर का सजो पै निहाल,
1: उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करह बड़ भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को तुम कर मान,
1: जो किछ करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग,
0: सह सुभा होवे सो होए, करने हार पछाण सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना,
0: जिसते उपजे तिस महे सुमाए, ओए निधान ओए सुख निदान, उन्हों बनाए,
1: आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान,
0: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, 8-14 श्लोक,
1: सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार, जा कै स्मरण उदरिय, नानक तिस बलिहार, सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी,
0: टूटी गंडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल,
1: सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे,
0: रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनाशी प्रभ आपे आप,
1: आपन की आकछु न होए, जिसौ प्राणी लोचै कोए,
0: तिस बिन नाही तरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम,
1: रूपवंत होए नाही मोह, प्रभु की जोत सगल घट सो है,
0: तनवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब की तिसका दिया दरब है,
1: अत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वे,
0: जे को होए बहे दातार, तिस दिन हार जाने गवार,
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा अरोग,
0: ज्यो मंदिर को था मैं थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन,
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ता रह, प्राणी गुर चरण लागत निस्तार,
0: ज्यो अंत का दीप प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास,
1: ज्यो महाउद्यान मह मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे,
0: इन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर,
1: मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए,
0: दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्या तू तसै चितार,
1: जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान,
0: कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस डूबी पतंग,
1: राम नाम जा फिर दे माहे, नानक पद से ती कर जाहे,
0: जिस वकर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया,
1: ताजब मान लेहो मन मूल, राम नाम हृदय महतोल,
0: लाद खेप संत संचाल, अवर त्या विखिया जंजाल,
1: धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए,
0: हो वापार बिरला वापार है, नानक ता कै सद बलिहार है,
1: चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो,
0: साध की तूर करो इसनान, साध उपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा बड़ भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए,
0: अनक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे,
1: कोट गही संत है दर आया, सर्ब सुख नानक तेह पाया,
0: मृतो को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार,
1: सर्बनदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। ਰਹੇ
0: ਸਭ ਕਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
0: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ
0: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਏ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਇਕ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ
0: ਸਾਚੀ ਦਿਸ ਸੱਚ ਆਇਆ ਕਾਰ ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਪੰਦਰਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਨ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
0: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
0: ਸਾਤਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨੁਰਾਓ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ
0: ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ
1: ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਭ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ
0: ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਬ ਮੈਂ ਤਬੀ ਸਰਗਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
0: ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
0: ਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਤਿਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
0: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਕਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਤਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪੂਰਹਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
0: ਨਾਨਾ ਬਿਤ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਓ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਸਗਲੈ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੈ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਨ
0: ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੈ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
0: ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆਸਵ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰ ਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
0: ਵਰਤੇ ਕੀ ਮੀਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਕੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੇ ਗੁਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਸੋਲਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ
0: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ
0: ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ
0: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
1: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ
0: ਬਸਤ ਮੈਂ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ
1: ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇ
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ
1: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ
0: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ
1: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੇਵਕ ਉਚ ਤੇ ਉਚੈ
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
0: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਖੈ ਪਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ
0: ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬੋ ਪਾਤ ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤ ਬਿਰਥੈ ਜਾਤ
1: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਬਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ
0: ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ
1: ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਐ
0: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਇਆ
1: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਸੰਗ
0: ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜੰਤਪਤਾਨੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ
1: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਬਤ ਨਾ ਨਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ
0: ਲੋ ਜਾਚੇ ਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ
1: ਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ
0: ਜੋ ਹੋ ਆਹੋ ਵਸੂ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ
0: ਆਠ ਪੈਰ ਪਬ ਸਹਿ ਹਜੂਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੈ
1: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹੇ
0: ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ
1: ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਾ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ
0: ਅਵਰ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ
1: ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਸਤਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਓ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ
1: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰਦੁਰ ਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈ ਸਹਿ
0: ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ
1: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
0: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ
0: ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ
1: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਓ ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ
0: ਸਰਵਨਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਐ ਜਨ ਜਨ ਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
0: ਸਹਿਜ ਸਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
1: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
0: ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
1: ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮਪਤੀਆਂ ਨੇ
0: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ
1: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
0: ਜੇ ਬਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇ
1: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
0: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ
1: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹੈ
0: ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
1: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਪੁਰਖਾ ਨਾਹੀਂ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
1: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ
0: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
1: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿ ਤੇ ਨਾਸੇ
0: ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ
1: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ
0: ਪਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ
0: ਚਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭਉ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਾਜਾ ਸਰਵਨ
1: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰ ਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
0: ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਬਾਬਾ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
1: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
0: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਅਠਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
1: ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
1: ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰ ਹੋ
0: ਕਰਨ ਕਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਥ
1: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
0: ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
1: ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ
0: ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖ ਦਲਾਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪਰਵਾਨ
0: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦੈਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ
1: ਕਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
0: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ
1: ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਸਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ
1: ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
0: ਆਵਾ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
1: ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ
0: ਅਨਕ ਪਾਵਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
1: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੂ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
0: ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
1: ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਬਨ ਤੈਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
0: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
1: ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ
0: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गावो
0: गुण गावत त्रि उत्तर समैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल
1: होए अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
0: छाड़ सियान सगली मना सात संग पावे सजतना
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्त कलेख
1: एको जापे को सालाहे एक सिमर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहे ओ प्राव्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
1: मन तन अंतर एक प्रव राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अट उन्नी श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभेनती अपनी भगती लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभ की गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत
0: एक ओट एको आधार नानक मांगे ना प्रभ सार
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: इसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै
1: गुरपूरै ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो हो
0: पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ
0: नेत्रो पेत रस सुख होए मन बिकसै साधु चरण तो
1: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकी उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
0: प्रभ क्षण दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब कटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्ब कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत
1: साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरन चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब आपन आप पार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्राव केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरु को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
1: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
0: जो स्वरूपी जोत संग समावे तह किसै भू कौन तृप्तावे
1: करन करावन करनै हार नानक करते का नाही सुमार
0: जापनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
1: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन
0: जब आपने आप उड़तारै तो सगन अपसगन कहां बिचारै
1: जहे आपन ऊच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
1: जह अछल अछेद अपीद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
0: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश
1: जह एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जह आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा
1: बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार
1: आप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंशावत
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया
0: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
1: जह अवगत भगत है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
0: पाक का अपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप है कौत करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
0: जिस भाव है तुसी अपन नाय लावै जिस भाव है तुस खेल खिलावै
1: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन बिश्राम अठ इक्की श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
1: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए
0: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
1: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राए
0: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण दान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
0: तत्पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सह त्यार
1: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
1: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
0: सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
1: इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसिया निरंकार
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजै गुर के पैर
1: एह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
1: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
0: अमृत बचन हर की गुण गावो प्राण तनन काए हे सुआओ
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंधीरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
1: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया
1: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवै जाहे
0: तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए
1: निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
0: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताकै निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
0: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
0: करन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड तै दिसै समाहे
1: तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
1: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
0: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणे अमोल
1: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धार हे ओ स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे बे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार
0: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
1: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
0: अंतरगा जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए
0: इसते हुए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
1: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
1: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभु सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
0: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
1: पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
1: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस नित्य आगो तरंग संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
0: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साल के बचन अमोलीक लाल एह रतन
1: संत कमावत हो तो दार आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
1: सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
0: आल जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुरसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभि खेप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
1: फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मै ताकि गत होए
1: गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम
1: सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबीस श्लोक

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसे लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है, तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती हैं। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हमसफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं, कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं?
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं, मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं, तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है ना, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने, ये मोटे मोटे तौर पर है। अगर हम सूक्ष्म
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है, आज कई है नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है, भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है, जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइट, इवन आई हैड सिमिलर थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल। तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा, फिर उसके बारे में सोचने लगा, तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाएं तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाएं जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात ना हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, हाँ, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन हो।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिस्टर शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं। हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीव सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आ गया वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बार बार जब अब वो हमने कर्म किया तो वो एक संस्कार बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि हम इतनी बार वो कर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाता है कि इंटेलेक्ट उस पर अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है। तो इट्स लाइक अ गेट जिसको हम बाईपास कर जाते हैं कि थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उस पर अपना डिसीशन नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया। तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा। तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया, एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया, तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है।
3: विशेष करके जिसे हम कहते हैं जहाँ कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल पावर
1: शिवानी बन कर रहे हैं ना, शी माइट ऑल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते कि यही करो, जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश करेंगे,
3: चॉकलेट चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही तब भी याद
1: आएगी, याद आएगी और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया चॉकलेट्स का तो उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है,
3: एंड देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट।
1: हाँ, इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की, बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो भले मेरा वेट बढ़ रहा है तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा, परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहती नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी कि अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा कुमारीज में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल, अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती हैं, अगर और डीप में जाएं तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इनटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शंस हैं। आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकती हैं।
1: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं, वह है चाय कॉफी। आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलने हैं कि उसके फायदे हैं, टीज के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे, बट मैं सोचता हूँ कि भी थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है, जो रिसर्च आ रही है ना अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है,
0: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है। बिल्कुल,
1: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट, उसकी आदत होती है।
0: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं, चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं,
1: और अगर नहीं मिला तो
0: सर में दर्द,
1: एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, एक स्फिंक्टर होता है इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं। आज बच्चों में भी गुटखा सिंपल चीज नहीं है, आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन हो।
0: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी, मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देर इज अ हेडेक, तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में
1: है? बिल्कुल, अभी दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दिस इज एडिक्शन इन फैक्ट। सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी।
0: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूं कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है, हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
2: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
3: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल,
2: नहीं इवन इंटरनली यू नो वो खींचती है वो चीज मुझे, फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना, तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर न कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खिंचता जाएगा, सो आई कम टू नो यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू।
4: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.

सुंदर वर्णन है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो भी स्वप्न में। तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है। पलका पर सो

जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए।

तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है। तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में?

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood. We have kingship in ours.
3: Create

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: man is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।